राहु केतु देवरास लयांबु जोई तो बंगंबा नुमित कोव देवता वुसु अहाव उहे निखन चानिंग दुना ताना बंगंबा कोलोई मिंगलेना मारुति महावली ब्रजंगवली नंबु निंजरी ननायना नंबु खुरुमजरी केसरी नंदन हे हनुमान।

मथंगा मुक्ताविर से मम्मी की लाइरेम्बी फिल्म से पुष्परानी अमरी एजे मैस्नाम अनिपुन समीनवैसे दालुम गुरुमयुम की मयेक्ता दीप सिनामना सेनांगवैसे नी।

कौनजेल ना चोम दिसन रुक चरीबा फिल्म इसे ये रोए बदले जरी पुष्परानी कवीरा दनुबी अरविंद स्वयं रोशन थोड़ा ममदी एसके मंगांग मयाम पुनः समीन भेजें सैरंगबा राजमणि अयपम सैरंगबा ननाउ सगोल मांग लोकत चरीबा फिल्म इनमा

0: एकलव्या एकलव्या
1: अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येनो चराचरं तत्पदं दर्शितं येनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव तोलब एकलव्यागि पुंगिंग आशोंद लेंशिन बिरकलो लेंशिन बिरकलो लेंशिन बिरकलो।
2: गुरुदेव गुरुदेव
0: नंबो
2: करी गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव।
0: ओ गुरुपत्ते
2: देव
0: करी थोरम लाई बगे।
2: हे गुरुदेव नशी अहिं नशी ने लोई की दुना हायेंगी अंगन बायु की पुंग फंदगी कौरव की ऐक्यो हिनी तरा मात होगी लांचिंग पुरेल ओय दुने हिमाय चुंबी के दौड़ी बा कौरव के सेनापति चीर बलान की पुंग फम मशीद करम बा ओन तैन बा ध्यान मद लुप्त न लेबी रमली बा देव
0: बे ध्यान नत्ते दुर्जधन पुण्य ध्यान
2: पुण्य ध्यान
0: नंग खंग्रवरा जरस्तंभ मथकता कक्लवशु हिंगली वह कले व्यक्ति मकोकना महाभारत लंजाओगी मित कुप्त व भावोक ओयरी दना
2: एकलब्या
0: कौरव पांडव अनिमक लान की धर्म विधान काय व्यारोई मतागुम लान नाकली वह मांडव मपुगुम
2: एकलब्या एकलब्या एकलब्या नशी सुलोई दी मागी वा भारत जोई पराजोई की दमक चीरव वता नगदब मिको असिदसु गुरुदेव की ध्यान दा दसु मचागी वापम दाबियु गुरुदेव
0: तब थको द्रुज्जधान लांगी चीरव तान फम्मशिद सेनापति यदु की पुंगिं चौकतन बचंग
2: देव
0: अदबो अदबो नंग कौरवरा
2: गुरुदेव
0: लंजा वर्षी हो बनुमित पान कलकपा हियांगे की तरा हम दोनी पान बा कौरव पांडव पक्का निमक माय के यमत दलेप चाउ इतन तक लंबा पाग कनाना अशुम नशिंग नकी
2: जशु मचा एकलब्य
0: महावीर दुगी खुलाई दी थाजे बने
2: अचार्ज
0: हायो कुरुपते महागना नंग अइबु सुयाउ ना पुमन मकपु सिंग नकी दबरा
2: दे तप थबिगनी गुरुदेव काउ थप पिखरो दशु मचा गी वापम
0: करी
2: ताप पिरशी लान गी लान थोंग नानाई जुच्च धन्बु करी करम बपोरम
0: काउ थोक लगा दब माबो
2: गुरुदेव
0: इनाकता इकाई बगी हुमांग मरिक मरिक कारब इकाई जरब माई थोंग दु पूदुना लू लुक न लेप चरमे अस्त्र विद्या नि चरमे अतोन बजाती नि इन थोक पिखी द्रोणाचार्यन
2: देव ऐबु
0: निंजबतन कृष्ण कृपा फंजदुना थमोइगा थमोइगा पाउना बलिका मतमदा जगत पुछिंग न खरबा तो लबदशु मचा सिगी मकोकपु जगत की मबुंगोगी सुद्र सोन मक न थौजान बिदुना लानियंग लिबा अहिंग ममकोक असिबु
2: अहिंग ममकोक
0: आउ थोक लगदबा
2: गुरुदेव गुरुदेव
0: नंग थौदोक अमदिनिंग सिंग लिब्र गुरुपति
2: आचार्य

हे गुरुदेव, शोक न शमनव यादवगी मम लब लोकनुंग शिदगी तोल लब एकलब्यान थमोई सेंग न कौजरी लेंशिन बिरक लोननाई थमोई आशंद लेपीर रोननाई थमोई पंपाक्त गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परमा ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।

0: इनाक्त लक्षरमे
1: देव
0: अस्त्रविद्या निजरमे दशुनी हाय दुना ऐने इंतो पिकी
1: कना
0: महाकना नखो इध कैदो उरक पदगी नसिन्ननाओ नहीं पाद वाकत नरी बद्रुज्जधान
1: वाकत पनच्चदे गुरुदेव शिक्षण थोरांग में दुर्जधान थमजनिंगले बदे
0: करी शिक्षण थोरांग राजकुमार
1: नशी की सदान दुगी लामे तेम तगी नोंग नमेरम थत्तुना ऐ शाहुई बुले काप अमुक्त द तेम जाई तरे नमया कबा कंदुना गुरुदेव गेरोन वो शिष्य दुना कृत्य सिंह सिंह ने रखने गुरुदेव वांगां कमजा हुले अत्ते दशु सिंगुम ना नोंग थबाई ब मंगक मागी दे पांडे शिक्षण थोरांग की दमक दुर्जधान थमजनिंगले बदे अशिगुंब अरोन में शिष्य कयाम का थंबीरी बगे गुरुदेव ना
0: दुर्जधान
1: माने मजबक खंडोक चदबयादे दुर्जधान ना कित्ते सिंग शक्तम कंजन बगे दमा
0: न कोई बुशंग न रखली बा दशु न मान अब दुबु साथेंग न दुना अपमान पिरम्ब दिनतना ऐ बु निंदा तो बगे करी अर्थ
1: गुरुदेव मागे लेरी बलि काके थाक अदुदा लंबा तो व्याव खेत्री इरोय कना याऊ तबना आई न जुशासन मुखाम दुन लाख सबनी दे ताक पियु दे गुरु बग न कच्चा बदान न खिनाद करी पेंद बले बीदर दुना तोल न बदशु मचाद दे गया पाम करी ले बीदर माबुली सु विद्या तम्बिरुड़ी बादे
0: ताको ताको नजर
1: हाउ
0: मिनम मखकुना न कोई न थ्यंगर लिबदो एक गले बियानी
1: कुनो
0: ऐ ईशान सत्तु न मावु कई दोंगे इधर सुखलाई तंबी की दे अतो पकना मत दसु ऐ लिशु विद्या ताकी दे गुरु न चेंग चारक पदन
1: गुरुदेव
0: ऐ अरोन बलामी लेते चलो चलो खुलाई और आई जरूर सो
1: गुरुदेव
0: ऐ की मत मांगन लगे
1: गुरुदेव गुरुदेव
0: ओह जधावन
1: गुरुदेव
0: नाक चत्री
1: गुरुदेव
0: करीगिनो
1: गुरुदेव
0: करीगिनो नंग नाकी नो
1: पाव ऐ ऐ दशु मसादु बो मांगन की बपाम जाइ दे
0: जधावन
1: दशु खुदिंग मकने एक कलब बिगुम नली शु है ये बो एक कलब दी कदाय दोनों खेत्री एक होएगी निंग तंबदी सोई दन मक्की मांग की गनी मकोई शु निंग थो कुबंगी दमक ताना रखनी मकोई मतुंग इंदुन भारत की काशिन को यागी उमंग वामंग द कुंडाले तारीबा बिल्कुल न चिंबक जाति कयान पुलपुन सिल्लक चुन लाल हो रखलबदी कदाई दनो खेत्री शासन कदों दनो इकोई शक्ति गुरुदेव देव मावु मांगन भी दब यादे गुरुदेव
0: करी मावु हाथ कदमा ऐना
1: नत्रबदी कनान जी माग लंबा तोरुगनी दे
0: ऐ ऐ मधु गमलोयरा
1: मत चलते गुरुदेव
0: ऐ गमलोय
1: गुरुदेव
0: मधु गुरु अमगी नीति की वांग मदनी ऐ मधु खत गमलोय दुर्जन
1: अदु दी अदु होयर बदी आ गुरु दक्षिणा गुरु दक्षिणा दी लोबी बयाई नम फमदगी
0: ऐ गि शिक्षण तब कनादगी सो ऐ गुरु दक्षिणा लोबंगम लोय द्रुजधा
1: मशा मग्न गुरुदेव की शिष्य निराजरी ब मंगोंदगी गुरु दक्षिणा लोबी बदी गुरु अमगी नित्ति की मनुंदनी देव एकलव्यदगी गुरु दक्षिणा लोबी उदे
0: गुरु दक्षिणा मानवो करी पी बंगम जगदौड़ी बा
1: हाँ न कच्चरी बस हनाल उपास देगी ऐहन बा मनी मुक्ता पाम भी रबसु कच्चगनी दुर्जधाना गुरुदेव की पुकनी न पेन भी न बा बापा ना इधर बा गुरु के लंग गई देगी दशु मचाद देगी निबी के तब गुरु दक्षिण आदि ननाई दुर्जधान हंग चगनी दे मागी एकलब्ज की ये थंग मखुबी यदो गुरु दक्षिणावन लोबियु दे
0: दुर्जधान
1: मदुत्त दे स्वजत पंगनी मागे मयोन चंखलक लिवे लिशु विद्या
0: दुर्जधान मदुदी का पुरुष की लिचनी वीर पुरुष समगी नीति न ते खंगो
1: वीर पुरुष की अमांग तों दुर्जधान खन पाम दे पांग पांग दबगी नहीं नबो वापम मदु नत्ते आई गिली सुप्न तगी नम थब पुन्न मकुन नम थरग मकोक थक्त नेत्तु न पांडो पदो की दमक लिशु हैबा लिशु हैरब मागी मकुन येत की ten kap the season nagadaba makubi adutani kaktak to na law talk papa ma hai bi ude
0: mai ko drujadhon jagat ki thawai pan ba mattane ya ningleroi daba shastra gi niti yau daba
1: to shastra gi niti
0: dona chat jai bu chen han ganu rajkumar
1: woreng sering gi phaja baba bab ke dalal gi nin khai daba matol madu rajniti de di yau de madu di sansar tyag tauraba muni rishi singi wakhalni vidhane rajniti gi vidhan de shakti paina nabagidama Singhasan kanna na bagi damag, Bombay punna baksijin na bayay, Papoy nagi kakhal, amok laite sakti mo na bagi lanjang da.
0: Rajadhan!
1: Gurudev! Punna makki matunga, Maharaj Dhritarashtragi, Yathang amatang ngak sabahay basili, Gurudev ki dharma oigani dana de.
0: Kari!
1: Kaubirabra Gurudev, Ashram thadoktuna lakpi kiwa matam madada, Hingjanabagi chananaba cheng chak Rajkumar Singhi Astraguru Paddabi Kanana Lantho Rakhi Ning Singh Biyude
0: Okle Toglo Drujadhon Okle Toglo
1: Ketu Imachasa Nakhoi Shuhayo Aibu Da Patta Bata Hanganu Aina Hari Bisi Chundabra
2: Adamuni Rajkumar Masih Guru Devaki Matthaudi Shishya Dagi Guru Na Guru Na Khira Lupa
3: Ittu Laibagi Yettham Mukhubi Guru Dev Na Nibi Gada Bane
2: Ketu Yekhoi Ki Shakti Ki Dabak
3: Tommy
0: Dabi, Adam, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru

0: एकलव्या इपहलाकले एकलव्या
1: हे गुरुदेव मंगला नत्तन ताईबंगन लेंग बिरकली तोलब एकलव्या आगे खंग पोक्त पोक्च मन्नी महियालन मेरे तोलब एकलव्या भो बर्ण संकोर वहिबने इन थोक पिरभ शोकन समदर बदस्यो एकलव्यान करीन पुजाता हूँ जगने करीन गाक जगने गुरुदेव हे देव तो लब एक लब आगे प्राण दिए पुंब गुरु की चरों तक चरवनी है दे
0: हाउ गल्लो इप्पा आगे एक कले बिया
1: गुरुदेव
0: हाउ शक्ति इप्पा लाग ले दना
2: प्रणाम गुरुदेव
0: हाउ गल्लो इसा सा न कोई सो एक कले बिया
1: गुरुदेव
0: नंग यस्त्र गुरु बुधमो इच्छें न निंजा बना लिशु तें सुदा लंबा ले तब बीरमो इबंगम जरगनी
3: गुरुदेव आचार्य
0: तब थाउ दुर्जधान हायो इपागी अकलेबिया
1: गुरुदेव
0: ऐन नहाक पुकम दौना अस्त्र विद्या तंबीबा खेत्री मचा सुंगसिन खंगजनब
1: थमोइग के मरीबो जगत कनान खंगबो उबंगम गदबहे देव
3: या
1: थमोइग ने की फाउंगब ध्यान की लिका परागी विद्धान मुकनान खंगदब ब्राह्मण गुरु न दस्यु एकलव्यागी गुरुदेव ने अद्भो मधु थमोगी वानी राज कुमार मयागी संसार दुदगी कैदों गई दस्य उबंगम लो
3: गुरुदेव
0: गज्जधान
1: नशे मंगोल की सेंगलर बपुंग पम्मसिद गुरुदेव ने ननागी खांगोक्त लेंग बेरक पदे ननाइन करीन शेवा कच्च दगे तक पियो है गुरुदेव
3: एकलव्य गुरुदेव ना नफम दगी गुरु दक्षिणा लोब लेंग भी रखली
1: हे देव क्या दनुमाय बंगा सेक लब्यागि तमोय गुरु प्रेम पाथोग लबनना शिक्षक तमोय ये पाक्त चोंत भी रखलो तक पियो पुंगि नफम दक्षिणा हे देव
3: आचार्य
0: एकलै ब्या
3: तक पीब मतम ओय त्रिब्रा
1: हे गुरुदेव तो लब दस्योनी कच्च नव करी शुलेरम लोई खन भी रदुना यथ यखा चिक पीर ब्रने देव नना एकल ब्यागी लई जब पुणं तक पिरो कच्च रगे गुरु दक्षिणा
3: गुरु दक्षिणा
1: खेट्री रेगी मान

0: मैं पैसा तो लगा देगी, कितना तो गई है सर।
1: हाय हाय ऐसी करी करम बा फिल्म से ताबी निंगली बनो ऐसी सी वो
0: सकंग दो बकिलंगी ने रामेश्वर
1: हाय हाय
0: दरगाह पुष्पा रानी ने सब तो पर लिखा था ना उगे ताजा जैसा।
1: सैरिंग बा सैरांग बदी खंग बीब्रा
0: हाँ तो देखो कितना
1: हाय हाय सखंग दबा फिल्म दगी रामेश चंद्र मदी पुष्पा रानी के पुन्ब खुंजल दा बीरमंगोल में कोलाना सेरिंगबा नुमाइटेम इबुम चाना सेरांगबो उइदेबो को इसेसे मथंगी अमु खंबीर अपम मतमदा निंगसिंग बिननाबा निंगसिंग जरी लोइना नंग असी की गुड आफ्टरनून लेडीज की अहान बा कॉलर सो वे बिबसिबु करी फौबी की वखलदा हाय हाय हाय लाइव अप फबा हाय बता रे ऐसे की गुड आफ्टरनून लेडीज की अहन विषय खुदल तमजरी मैं हम पुने तामिन से ताकि

0: हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: गुड आफ्टरनून लेडीज, द तरामनो उच्चेरी। हेलो,
1: सारे झुमका लगाने वाली मेरे नूंगी अंकल ने था अब तो
0: हाय नूंकन बनो वही बसु यारे मोरांगथेम।
1: फिल्म देखी खराई था तलाई हाँ गुम कसे खबर
0: ꯍꯣꯏ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅꯁꯨ ꯉꯪꯕꯤꯔꯛꯏ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯗꯤ ꯈꯪꯕꯤꯗ꯭ꯔꯥ?
1: ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯅꯥꯕ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯔ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯃꯤꯡ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯞꯆꯍꯧꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯡꯕꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯡꯕꯥꯟꯅꯤꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯕꯥ ꯅꯥꯕꯤꯕ ꯇꯧꯕ ꯅꯪꯇꯪ ꯍꯥꯞꯆꯍꯧꯒꯦ ꯁꯥꯔ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯅꯥꯕ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯔ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
1: ꯍꯥꯞꯆꯔꯒꯦ ꯁꯥꯔ
0: ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ, ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝ ꯎꯁꯥꯔꯥꯅꯤꯒꯤ

मरक थरंग हसी की धमजरी बा गुड आफ्टरनून लेडीज की स्टूडियो की मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं स्टूडियो की टेलीफोन नंबर हम कहने निंग सिंह जगे 8798803293 हम कहने निंग सिंह जरी

0: हेलो,
1: हेलो सर।
0: गुड आफ्टरनून
1: हेलो
0: लेडीज की
1: सर।
0: थोरमदा तरामना उपचरी कोल तो बिरगली सिकना हुई बिरबनो
1: अब्दुल सर आई कंपाउंड की बगे पति ने तब जराई छे सर
0: तरामनो उपचरी करी करम ब इसई तासी गेंगे सिदी
1: नसी दे खलु दे फिलंग गिने
0: हाय हाय
1: ना बोलन सपा खलु दे नो मत जुत उद इसे जो थावी रसा
0: सेयिंग ब सेरांग बुदी खंगबी ब्रा सेरिंग बस सेरांग बुदी खंग बीरी ब्रा
1: अजु अजु जी कब थू कब फोके सा
0: हाय हाय
1: नुमाइ जब जब फंग बगी हरा बने जान
0: हाय हाय आई निंग सिंग जगे खलु दे फिल्म की नाउ बॉय की नाइटों कंजल दा नंदो निंगों बना सेरिंग बा गोपी में दी खोगेन की आ खोगे ना सेरांग बी इसे नी इसे ही सिमती हम तंग अंगबीरम बी यार के दी इसे मखा था थाजर आगे है बबू
1: अजु सर ऐसे यामना तू ने तो संपो किसे लोग इंगे सा हरा हो या ना
0: हाय हाय हराव हराव ना
1: साल में तेरे कितना हाजिर रखे
0: हाय हाय हराव हराव ना मती एम तंग अंग बुद्धनी में आना तानिंग ली बसी
1: खलू दे नो मता नुंग सीबा से असम तवन सारा सुन थम जर गया
0: हाय हाय इसे ही कदल तम जरी मैं अपने तामिन सी

शुक्रिया दोस्त मनी सना। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित संगाई चैनल में। और आपको हम सुनाने जा रहे हैं, हम यानी आपकी दोस्त वैलेंटीना, आज आपको सुनाने जा रहे हैं गीतों के तरंग और उमंग में गीतमाला का ये गाने नए पुराने कार्यक्रम।

दोस्तों, खासों खास आपके लिए हम आपके उम्र को दराज रखने के लिए कुछ ऐसे गीत सुनाने जा रहे हैं अपने कार्यक्रम गाने नए पुराने के जरिए। और वो पहला गीत का नजराना है आवारगी फिल्म से, आनंद बख्शी की रचना और अनु मलिक के संगीत निर्देशन में। गीत में आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज द्वारा, और अपने ही बाली उम्र में नजर आए थे इस गीत में मीनाक्षी शेषाद्री के साथ गोविंदा। तो ये है आप ही के लिए।

और बारिश के छमछम में, गीत की ये सरगम, गीत की ये लहरें, ये फुहार है संदेश सांडल्य द्वारा, संगीत के निर्देशन में फिल्म चमेली से एक गीत सुनिधि चौहान की आवाजों में, और गीत के लेखक हैं इरशाद कामिल।

गीतों के झनकार के साथ दोस्तों, अगर कोई खूबसूरत सा समा होता और उस समा को बांध रहा होता, छम छम करती ये बारिश की बूंदें, बस और क्या, फिर झूमते रहो। आशा भोसले के साथ अशोक कुमार की आवाजों में ये गीत है खूबसूरत फिल्म से। गीत के लेखक गुलजार और उसके तालमेल को जोड़ रहा, बांध रहा अपनी संगीत के साथ राहुल देव परमार।

और एक नए अंदाज में ये बावरी है पिया की। फिल्म के गीत और संगीत दोनों में कुछ ऐसा है जो किसी किसी को छुपता होगा, शायद यही सही। पिया बावरी ये गीत है दीवार फिल्म से, नुसरत बद्र के बोल और आदेश श्रीवास्तव द्वारा संगीत। गीत में आवाज़ अलका याग्निक की।

और जाने क्या बात हुई है जो दिल की आवाज बनकर ये गीतों में झलक रही है। सनी फिल्म से ये गीत है, लता मंगेशकर की ही आवाज में आनंद बख्शी द्वारा, गीत के बोल और संगीत निर्देशक राहुल देव पर।

और दोस्तों, अगर आपका मन भागने का मन करे हर किसी चीज से, तो कृपया आप इस गीत को सुनने के लिए प्रयास कीजिएगा। बस आपके उफ उफ हाय हाय दूर हो जाएगी। सुनिएगा, ये गीत है मनपसंद। वाकई मनपसंद गीत है ये, मेरा मनपसंद फिल्म से ये गीत है, लता मंगेशकर की आवाज़ में, अमित खन्ना के बोल और राजेश रोशन द्वारा इसे निर्देशित संगीत।

दोस्तों, सांसों की लहरों पर दौड़िएगा और जिएगा जीवन को भरपूर। और ये है संदेश गीतमाला की तरफ से, और रहिएगा अपने दोस्त मनीष अन्ना के संग अगले कार्यक्रम के लिए, और दीजिएगा हमें इजाज़त। नमस्कार।

0: मखल क्या की थोरम सिंग लिंग दुन सेम जबा आकाश फानी इंफाल की संगाई चेने ल संतोक चरीबा नुंगतिल की थोरम परिनी अदुन नुंगाई ने ताविरी बसे पुंगफु मसे द पुदुन लाख चरी मनीमला अवजिक ताविरी सी मनीमला
1: चिथी ताविर अगली बा मदी थोरम ताविरी बसिंग बु मनी नाहन बद खुरम जरी
2: मला ना सु खुरम जरी
1: हौसी मला
2: ngasi gi ahan boina lokha cheri basi thiasi kasar bontarapur soibam lairak pukhri achobom mapal dagi soibam chandra kumar na thabirak basi thini
1: kasar bontarapur soibam lairak pukhri achobom mapal dagi soibam chandra kumar na kari kari wafam thambirak pamala
2: chandra kumar gi sairing pathok cherake lemlai ngani aidi laizenung gi lemlaini pukhri da yogli ba ngani do harau mathoi kaduna इफोंग फोंग नमोंग जबा साना जबा ऐदि फंगद्रेदो मैतै पोइरै लमदमगी पुखरी मचा मचा सिंगि लेमलै सिंग हेक सोंगथोरक पदा पनवांगदा फत्रबा हिंचा याइतमबना चागदबगुम ngaiदुना लैरे येंगुने करिनुंगि लेमलै ngaबु ओइजरोबा अहानबदा तामो मनियमदि चेममलाबु इकाइ खुमनजरी
1: शैवम चंद्र कुमार की लेमलैंगानी ऐदि मिंगथोनबा सैरिंग मलाना पाबीदुना ताजरी यामना फजै थगचरी इनाउ चंद्र कुमार बुसु तरामना ओकचरी खुरुमजरी
2: वाहंगदि कया कयानी ननाउगि थमोइदे लैजरीबा हंगलरोय खनबसु ngamde मनीमलागि खोइथुमनरबो खोंजेलासि हेक ताजिरुबा मितकुप्ता
1: उहु
2: सोइदबा ngamdaबा अइखोय मियोइबगि मपोकनी सोइरुबा मितकुप्ता लांजखरे हायरुबदा ngakpiroidaबा कनासु लैते तामो ननाउन हाइजरीबसी चुमदबरा
1: चुम्मी सोइदब ngamब मिलेते चंद्र कुमार मियोइबना सोइदब ngamलबदी लाई लैरुबगी करी कान रुखिनी नत्रने माला
2: अचुम्ब मंगनी
1: अदुमकपु सोइदब ngamद्रबा मियोइबना सोइखिबा लानखिबा याव मिकुप अदुमकतता लानख्रे सोइख्रे ngakpiगनी हाइबसी मियोइबगी लोंचने अदुगा ngakpiगनी हाइबदा ngakpiबा हाइबसिमसु मियोइबगी हौना लोंचने इनाउगी वफम मनीमलाना थमोइसिंगने याजनिङि अदुगा चंद्र कुमार ने चिथि की अहोब सरुक्त पनबिखिबा मनीमला की खोइथुम नब खोंजेल हाइब अदुमदि हराउ बसे करम न फोंगदो कदबनो खंगद्रे थागत पद हराउ दब कना बोले रंगदगे यामन नुंगाई जई चंद्र कुमार बु थागत चली
2: हौखी ब जुलाई अमा खोंजेल नाचोम द संदोक पिरकपा जीएसटी न कानब पिबा केंद्र द एनडीए सरकार न टैक्स रिफॉर्म हिरमसिदा आरामबम धनेश्वर ग देविका चोंगथांग गु उनबिखिबा ताजरुबदा कानबना पिक थनखी यामना नुंगाई जखी नुमितुद पाव पिबी खिबा वाशिंगटन गी पाव गी अरोइबदा पाव से सिंदगी खोंगचबा मरोइब पाव दा चित्रधानी ना पाव दा पुलिस हाइगदबदा पुट हाइना हाबी रखी थौलंबु ममुता न ताजबा ननाव चंद्र कुमार ना वारोबदी लैजदे अदुगा हौखिबा जुनगी तांग कुनिपाल खोंजेल नाचोमदा अरिब मतम इसै सिंग ताजरुबदा यामनमक नुंगाई जखी इसै सिंगी वाहन थो कोइना डायलॉग पीरगा लांथो पीरकपा सुरमलागुम नुंगाइजे अदुबु थिंगबाइजम बिपिन चंद्रगी इसैदा ताइबंगदा अइगिनी हाइबंगम द्रबी मंगलांद लाउको हाइबनी अदुबु मंगलांद लाई हाइना डायलॉग अदुदा ताजकी मसिबु कमदौरिबा जानो तामो
1: मेकअप खरगी ममांगदा थमजखिबा सोइदबंगमबकनाबु लैबगी हाइबदो मसिनी चंद्र कुमार असोइबन सोइरमदाइदा कैदौनुंगद मांगजौनना ताक्लमबलैते असोइब अमते याउबो उदबा जगोय इसै कयासु असोइबन पिक थनखिबा अयेंगबन खंखिदबसु कोंगाइनी लाइव प्रोग्राम सिंगदना मसि खरहेना थोकल्ली अदोमन थमोइन पेनबिखिबा असोइब याउदब थौरम अमगिदमक थागत वफम थंबिरकपदा मनीमलाना हराव हराव लोक्सिनजबगुम अखोइगि थौरम सिंगदा करिगुमबदा असोइब याउरप मतम अदुदसु पुथोकतुना ताकपिरकप मतमदा हराव हराव अदुमक लोक्सिनजे पुक्सेल चाउन ngakpinaब वफमसु मनीमलाना महुत छिनदना थमजरी अदुगा अरोइबद थंबिरकपा वफम मदुगि मतांगदा हाइजनिंगबसि इसै अमा लानथोकनाबगिदमक वहैगि लाइतेङोइना अदोमना डायलॉग हाइना थंबिरकलिबा अनाउंसर न सेमजब कंपेयर अदु लानथोकतुना ताहन गदौरिबा इसैगि मयेक अदुगा चपमानगनि हाइबदि लाइतबर खलि हकथेङनना नत्रगसु नाकोइनना नुंगद मरि मचामन कंपेयर मसुंग इसै अनि अदुबु समनरबदि थोइदोकना काइदबर खलि करि हाइगि माला
2: अचुमबनि
1: प्रेजेंटर गि वहैना अमनि अदुगा सैरेंगबगि मयेकना अमनि हाइना थमजगे अदोमबु थागचरि
2: मथंगि सिथियासिना हाइरोक पार्ट टू थोकचोम लैकाइदगि नोंमाइथेम सुभाषचंद्रन थाबिरक पसिथिनि
1: अइखोइद ततन चिथि बिरकपा हाइरोक पार्ट टू थोकचोम लैकाइदगि

0: 웨스턴 뮤직 따비리 동안 메 토름 센독드르 타한저리 베시 아카스바니 팔기 FM 상아이 채널 데기니 하우징 눈틸기풍 홈 따비글 로이르나 마니프리 더 파우 따비리시
1: 아카스바니 팔 모랑 TV에비나 파우바저리 मुख्यमंत्री युम नाम खेमचानी इम्फा की लंबई खोना खोंद हांग रिलीफ कैंप फीवम लून नाब आई टी पी सिंह सेल की तेवान खुशनखे मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया पोस्ट राज्य सभा की एम पी अधिकारी मयूम सरदा देवी एम एल ए मणिपुर सरकार की मकोक तोब ऑफिशियल सरुक याखे की सोशल मीडिया पोस्ट श्री खेमचान है सरकार आई टी पी सी आई डी पी इचिन इनाउसिंग अहम प्रायोरीटी थमदना याफनब थम पाखली सरकार आई डी पी सौगटी सोहल अना लय की तंगा फदब इमूंग चान हक्सल की तेवान पीबा जथगी ड्राफ इलेक्टोरल कुंतर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एस आई आर फेज टू की वर्कशॉप इम्फा की निरपा जुथेक्त थम्बा संगलें पांगे मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया पोस्ट वर्कशॉप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फोब ड्राफ इलेक्टोरल रोल कुंतरुक्तने पांगम मुख्यमंत्री युमना खेम चान बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसीडेंट राज्य सभा की मेम्बर श्रीमती ए सरदा देवी गृहमंत्री गोविंद दास हाने की एम पी श्री विनोद सोनकर एम एल ए दोल इस मकोक थोब लुचिबी कर्याकर्ता सरुक याखे की सोशल मीडिया पोस्ट मुख्यमंत्री खेमचान है चाही इस सेप्टेम्बर तरुक फोंगद फाइनल इलेक्टोरल रोल अरान मपुंग फाबा अचुबने थाजब ले फ्री एंड फियर ट्रांसपेरेंट मुनमकना थाजब मिखल की थबक थोरम पाइकल राज्य सरकार पांगने जिरीबाम की डिप्टी कमिश्नर अरविंद हंगलेम है जिरीबाम जिला स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एस आई आर की थबक लोसीदना फाइनल इलेक्टोरल रोल फोंगनबगीदम सेम साब लोरे अकोई जिरीबाम पाउमी आथेम बिश्वजीत है पा की मिफम डिप्टी कमिश्नर अरविंद हंगलेम थोंदोखिबद जिरीबाम जिला की अपुनब इलेक्टोरल कुंथा निथोई चाम हूद्रा माथोना बेलो सिंह इनुमरेशन फॉर्म पीछे नुपा वोटर लिंग तरातरु सहुम सूबन तरुक होगी वोटर मिंग लिंग तराम चनीपा हूँ मरी ट्रांसजेंडर की मिंगरी जिला वोटर लिंग चनी हूद्रा तरह मिंग याद्रे कनागम सेंदोनी हाचनी मथंग अगस्त मरी फाव की मनुद फॉर्म सिक्स सवेन एट सिजन इयारो की खुथांग वाकट यागनी फाइनल इलेक्टोरल रोल लिंग कुंतरुक चाही इस सेप्टेम्बर तरुक फोंगनी पा की मिफम इयारो अत इलेक्शन ऑफिशियल सरुक याखी चांदेल जिला की इलेक्टोरल रोल की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एस आर की मांग राजनीति दल पुनम की पांगे मिफम जिला एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सभापति पांगी जिला डिप्टी कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस हॉल पांगी मिफम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एम डी फिरोज खान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मका चतरीब स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की राजनीति दल मिहुद वाफम क्या इंडिया मेट विभाग इम्फा सेंटर है लाइव नोमनी राज्य की जिला खर नोंगुगनी हयें फाव तमेंलों सेनापति कांगपोपी इम्फा ईस्ट इम्फा वेस्ट उकुल जिरीबाम नोने थौबाल फेरजोल नोंगुगनी कामजों विष्णुपुर कक्षिंग चांदेल सुजामपुर जिला नोंगुरो आसाम राइफल ईस्ट की इंस्पेक्टर जनरल मेजर जनरल आई एस बिंधारना जिरीबाम जिला की सी ओ बी बोरो बेकरा मफम गाक्षल की फिवम का मरी लेना सी एस ओ सिंह मिहुद खुंजा उनक्रे आसाम राइफल्स की सोशल मीडिया पोस्ट है उनब मफम शांति लेहनबी हेन अफब नुसी चाब की मरी हेन सेसिलहनब पांदम मिएंग थमदना पांगोपनी Assam Rifles ka Saramadi Hilakanti Police ki apun bakang bu amana ti bu bagi thabak ja thabada miyoi ama lupa koti taruk longi senpham oigadaba ya ba tablet singa konana Assam dagi phare Assam Rifles ki social media post amad hai Assam gi Hilakanti bypass area da ti bu bagi thabak ja thabada ya ba tablet sing adu phaki bani mapham adu dagi punna ya ba tablet ising kuntharom security force ki kangbu aduna phabangangke pharba polam sing amadi miyoi adu makata ba ain gi thabak tarom sing lokhna bagi da Hilakanti Police Station da sinakre University sing amasung college sing oi batara tare subat national youth parliament competition sing ani kunmari kunmangagi manayen topagi thauram haiyeng ni delida pangthok lagani

0: औजेक्टावी ख्री सत्तम उमंगलाई हराउ ब तरामरी शुभतांक कोंजेल द क्वायराकपम सुंदरमडी क्वायराकपम मीनाक्षी सैसकी बसिंग इरुंगबम पद्मावती लौरेंबम बेडवती लाइश्रम लेबांग मसामडी अमाईवी हेमोलता अईव लैप्राकपम अशोक कुमार पुठोकप थांगजम इबोचा टेंगबांगबना हुईरेम प्रियोजी
1: परिंग नाइने संदोक चरीबा रेडियो शेरिल उमंगलाई हराउबा तरामरी शुभ तांक ताविरे हाउसिक मतंग की धरमदा ताविरे सी रेडियो क्लास चहुम हुंपुनितो शुभ तांकता क्लास सिक्स के इंग्लिश लेशन कुंजरानी अप्राइड ऑफ मणिपुर थरमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तिंगमांगा लोइनना पुथोक चब थरमनी हाउसिक ताविरसी रेडियो क्लास कुंजरानी अप्राइड ऑफ मणिपुर

मतम इसे की खुदोल गनी शुभदा नुमाइटिम सोलेन रोगी नाइटों कोंजल दा ब्रजेंद्रो वहिंग जान सेरिंग बा मतम इसे ममू लांतोक चरी

0: ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫
1: टेंजरीन बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
3: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
3: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: ꯃꯩꯈꯨ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄ ꯐꯣꯒꯤꯡ ꯇꯧꯕꯅ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫
6: ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯅꯥꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯤꯛ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯑꯦꯗꯤꯁ ꯀꯧꯕ ꯀꯥꯡ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅ ꯆꯤꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯥꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯀꯥꯡ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯇ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯆꯤꯛꯏ꯫
7: ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯔꯨꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯧꯕ, ꯀꯣꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯆꯤꯛꯄ, ꯁꯔꯨ ꯁꯌꯥꯡ ꯆꯤꯛꯄ, ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯆꯤꯛꯄ ꯅꯥꯕ ꯐꯥꯎꯕ, ꯃꯥꯏ ꯉꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯕꯥꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯥꯏ ꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝꯅ ꯃꯄꯥꯛ ꯃꯄꯥꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫
6: ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯔꯤꯝꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯇ ꯏ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ꯫
7: ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩꯁꯤꯡꯗꯤ
6: ꯑꯆꯣꯟꯕ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯂꯤꯠꯄꯤꯌꯨ, ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯔꯦꯄꯦꯂꯦꯟꯠ, ꯃꯁꯀꯤꯇꯣ ꯀꯣꯏꯜ, ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯕꯦꯠ ꯄꯔꯃꯤꯠꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ꯫
7: ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯄꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ, ꯇꯌꯥꯔꯁꯤꯡ, ꯆꯐꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕ, ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯀꯞ, ꯀꯧꯇꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ꯫
6: ꯄꯥꯎ ꯆꯦꯟꯖꯔꯤꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ꯫
8: ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯟꯅ?
9: ꯅꯥꯁꯤꯡ ꯈꯩꯒ HIV ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯨꯒꯦ ꯇꯧꯕ꯫
8: ꯀꯩꯒꯤꯅ ꯅꯕꯥꯅꯤꯗꯤ HIV ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯗꯦ?
9: ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯑꯍꯟ ꯃꯁꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗ ꯏꯕꯥꯅꯤ HIV ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯎꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯝꯕ꯫
8: ꯅꯕꯥꯅꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦꯗꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯛꯄ, ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ HIV ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯗꯦ? ꯅꯕꯥꯅꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯅꯗꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯅꯦ꯫
9: ꯑꯗꯨꯏ ꯅꯠꯇꯦꯗ, HIV ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ HIV ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ꯫
10: ꯃꯁꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ HIV ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ HIV ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯆꯦꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯗꯕꯅꯤ꯫
8: ꯑꯩꯁꯨ HIV ꯇꯦꯁꯇꯨ ꯇꯧꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯦ, ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ?
9: HIV ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯦꯜꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯇꯦꯁꯀꯤ ꯔꯤꯖꯜꯗꯣ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯑꯦꯗꯁꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯕꯗꯤ HIV ꯍꯦꯜꯞꯂꯥꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1097 ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯁꯜꯂꯣ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ, ꯆꯠꯂꯒꯦꯀꯣ꯫
11: ꯅꯥꯎꯕꯤꯌꯥ, ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯂꯤꯅꯣ ꯅꯪꯕꯣ?
12: ꯏꯆꯦ, ꯑꯩ ꯀꯃꯟ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦꯕ,
11: ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯅꯦ,
12: ꯑꯗꯨꯗ BSC ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯇꯝꯅꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯝꯇ ꯊꯤꯔꯨꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ।
11: ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯋꯥꯔꯨꯔꯅꯨ, ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯑꯦꯠꯃꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯍꯤꯌꯥꯡ ꯍꯤꯔꯦꯟ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ,
12: ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯆꯦ
11: ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯦꯜꯁꯨ ꯂꯩꯖꯕ, ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯥꯟꯅꯔꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯂꯦꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ, ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯅꯦ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕ, ꯔꯦꯒꯤꯡ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ, ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯣꯏꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯔꯜꯁꯀꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ, ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯔꯤꯕꯗꯤꯅꯦ EMI ꯄꯦꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯅꯥꯎꯕꯤ,
12: ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯅ ꯏꯆꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ
11: ꯑꯗꯨꯅꯤ,
12: ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯁ ꯇꯧꯗꯕꯗ ꯇꯝꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯏꯆꯦ?
11: ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤꯅꯦ ꯅꯪ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯋꯥꯔꯨꯔꯅꯨ, ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅꯅꯦ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯥꯎꯕꯤ,
12: ꯏꯆꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯃꯤꯡ ꯆꯜꯂꯨꯔꯒꯦ,
11: ꯈꯨꯖꯤꯛꯃꯛ ꯆꯠꯂꯨ, ꯑꯦꯛꯃꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯅꯔꯁꯤꯡ, ꯍꯤꯌꯥꯡ ꯍꯤꯔꯦꯟ ꯂꯩꯔꯛ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ, ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ 9436 67 6980 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 6909 158069.
13: ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯜꯁꯤꯗ ꯁꯥ ꯉꯥ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯖꯤꯕ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤ, ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯅꯥꯕ ꯂꯩꯅꯥꯒꯤ ꯆꯥꯗ 40%ꯗꯤ ꯁꯥ ꯉꯥꯗꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏ, ꯈꯨꯗꯝꯑꯣꯏꯅ ꯔꯦꯕꯤꯁ, ꯕꯥꯔꯗ ꯐ꯭ꯂꯨ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯎꯄꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ, ꯁꯥ ꯁꯟ ꯄꯥꯏꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯈꯨꯠ ꯁꯥ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ, ꯆꯥꯅꯕ ꯁꯥ ꯉꯥ ꯌꯦꯟꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯃꯨꯟꯅ ꯊꯣꯡꯕꯤꯌꯨ, ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯁꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯝꯒꯤ ꯁꯥ ꯎꯔꯕꯗꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯪꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯚꯦꯇꯅꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ, ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯌꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯌꯣꯛꯄꯤꯌꯨ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯇꯠꯅ ꯊꯥꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯅ ꯍꯤꯡꯂꯒ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯁꯥ ꯐꯒꯅꯤ, ꯄꯥꯎ ꯆꯦꯟꯖꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯀꯣ-ꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯋꯥꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯐꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯖꯨꯅꯣꯁꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯔꯤꯝꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ꯫
6: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯁꯟ ꯐꯪꯂꯕ ꯍꯩꯉꯥꯡ ꯀꯣꯟꯊꯥ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯕ꯭ꯂꯦꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯕꯤꯍꯥꯁꯅ

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: मखल मथिल की थोड़ों क्या संदूक तुने तहन जरीबा सी आकाशवाणी इंफाल की FM संगाई चैनल दिगिनी हौजिक तावी रसी डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर डा चुराचानपुर जिला की चिथी अईबा इखोई की चुराचानपुर की पाउमी फ्रांसिस शोंगाती।

0: आकाशवाणी इम्फाल हुजी निमिदांगी पुंग मापल तारी मणिपुरी द पाओ ताविरसी।
1: आकाशवाणी इम्फाल निंगथौ खोंजम सुनी न पाओ पाजरी उख्रुल जिला की नोशांखों सखंगदब खुलाई पाइब एम्बूस तौरपदी निफू सूब असम राइफल्स की पर्सनल अनीसीरे अखोई उख्रुल पाउमी सोथिंग सिमरेन पुलिस की पाउ पल्लुन हाई थौदू पुंग खर हेल्पनी

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने। हर श्रृंगार में अर्पना आप सभी का स्वागत करती है। जरा वक्त मिला लें, 10:31 और 6 सेकंड हो चुके हैं, तो चलिए आज के हर श्रृंगार की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज के साथ फिल्म प्रेम पुजारी से ये गीत। एक बार फिर से बता दूं कि आपने

दोस्तों प्यार और जज्बात की दुनिया में मुलाकातों का अपना ही एक अलग अंदाज होता है। पहली मुलाकात की धड़कने हो या बिछड़े पलों के बाद मिलने की खुशी और उम्मीद से भरी जिंदगी, हर मुलाकात एक अलग तरह का एहसास देकर जाती है।

खयाम साहब का संगीत और लता जी की आवाज़ फिल्म खानदान से अभी आपने ये गीत सुना। दोस्तों ये बात तो है, जब किसी से प्यार हो तो फिर चाहे कितनी ही बातें कर लो, चाहे उनके साथ कितना भी समय बिता लो, मन हमारा भरता नहीं है। दिल हर बार ये दुआ करता है कि ये वक्त रुक जाए, काश ये वक्त थम जाए, मगर ये वक्त का पहिया है दोस्तों, ये कभी रुकता है। फिलहाल अगला गीत होगा वक्त फिल्म से आशा जी की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, जब दिल की पुकार दूर तक जाती है और आपके सामने वाले को भी आपसे मोहब्बत होती है तो ये आवाज उन तक पहुंच ही जाती है। जैसे ये आवाज आप तक पहुंची है, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज। ट्यून इन किया है आपने शैलेंद्र और कंचन की आवाज में। रफू चक्कर फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। हर श्रृंगार में आज अर्पणा आपके साथ है। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि जब मुलाकात होती है, बातें होती हैं, तो दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है। और कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि सामने वाले से जब मुलाकात करें तो सारी बातें कर ले, लेकिन जब घर लौटते हैं तो पता चलता है अरे ये बात नहीं की, अरे वो बात तो हम भूल ही गए। तो जब बातें अधूरी रह जाती हैं तो हर मुलाकात भी अधूरी रह जाती है। किशोर कुमार और लता जी की आवाज आपका इंतजार कर रही है फिल्म कामचोर से ये गीत।

10:55 और 28 सेकंड हो चुके हैं. अगला गीत आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में. फिल्म का नाम है कुदरत. इस गीत के बाद होगा ठीक 11 बजे समाचारों का सिलसिला आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. 11:10 पर आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा का रिपीट ब्रॉडकास्ट और उसके बाद 11:40 पर गीत मेरे मनमीत संग्रह होंगे आपके मैं अर्पना. फिलहाल इस गीत का आनंद लीजिए और इस गीत के बाद जरूर सुनिएगा एफएम गोल्ड पर समाचार.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी

0: साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं
1: अनेक अच्छे-अच्छे पदार्थ जो दिए गए अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई वे भी कहां गुल हो गई वे कहां चली गई उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी यह शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया महाराष्ट्र गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister. Reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
3: आज देश की धरती पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत एक महान देशभक्त भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
2: The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champad Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed interim General Secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case in which 8 people have been arrested. Addressing the media, Trust Treasurer Govind Dev Giri said, the possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out. 1993 batch IPS officer Alok Kumar Mittal has been appointed as Director General of Bureau of Police Research and Development. Another IPS officer of 1993 batch Amit Garg has been appointed as Director of National Crime Records Bureau. 1994 batch IPS Sujit Pandey has been appointed as Director of Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy. The appointment committee of the cabinet cleared these appointments today. The Nation today paid homage to veteran freedom fighter and former Union Minister Babu Jagjeevan Ram on his 40th death anniversary. The Babu Jagjeevan Ram National Foundation, under the Ministry of Social Justice and Empowerment, organized a homage ceremony at Samta Sthal in New Delhi. Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister for Social Justice and Empowerment Virendra Kumar, former Lok Sabha Speaker Meera Kumar, Minister of State B.L. Verma, Members of Parliament, senior officials and other dignitaries paid floral tributes. In Jharkhand, continuous rainfall has disrupted normal life across several districts. Met Department has issued a yellow alert for heavy rain, strong winds and lightning over the next 2 days. Widespread heavy rainfall has lashed Gujarat over the past 24 hours, disrupting normal life in the Saurashtra and South Gujarat regions. In FIFA World Cup, Portugal will take on Spain in a round of 16 match at Arlington in US tonight. In another round of 16 match, co-host US will face Belgium in Seattle tomorrow morning. England, Norway, Morocco and France have already entered the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.

0: हमें नहीं दे पाएंगे। श्रोताओं, जब आप हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज थोड़ी धीमी रखें ताकि एक बेहतर क्वालिटी के साथ हम दोनों ही लोग एक दूसरे को सुन सकें। प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन।
1: धन्यवाद प्राची।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करेंगे यानी कि चर्चा शुरू करेंगे, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
2: The benchmark domestic indices continue upward trend. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 24,400. Asian stock market indices display mixed trend and global crude oil prices decline.
0: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त। सेंसेक्स 500 अंकों से अधिक बढ़ा। निफ्टी 24,400 के ऊपर बंद हुआ। एशिया के शेयर बाजार में मिलाजुला रुझान रहा और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें घटी।
2: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: और अब श्रोताओं, आइए जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.7% की तेजी आई। दलाल स्ट्रीट पर इस कारोबारी सप्ताह की शुरुआत तेजड़ियों ने की। आज का दिन मिलाकर लगातार चौथे सत्र में तेजी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 लगभग 0.5% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.5% से अधिक की तेजी देखी गई।
2: Dalal Street kicked off the trading week on a strong note with benchmark indices advancing nearly 0.7%. The gains marked the fourth consecutive winning session, reflecting sustained buying interest and positive market sentiment. The Sensex climbed 521 points to close at 78,285. The Nifty added 160 points to settle at 24,430. In the broader market, on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index rose over 0.4%, while the Small-Cap 100 index gained more than 0.7%.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 4%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1.7% और बजाज फिनसर्व में 1% की गिरावट आई। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो HDFC बैंक 3.5% से अधिक, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 1.8% की बढ़त हुई।
2: Sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 19 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the key gainers, realty jumped 1.8%, private bank index rose 1.5%, and mid-small private banks quality tilt index added 1.4%. In contrast, PSU bank index shed 1%, hospitals as well as IT fell 0.6%, and focused IT lost 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,366 declined, 1,985 companies advanced, and 193 remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 95.40 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.09 पर कारोबार कर रहा था। दीपशिखा, आज के जो हमारे बाजार की जो चाल रही है उसे आप कैसे देखती हैं? क्या क्या ऐसे किन कारकों को आप मानती हैं जिन्होंने बाजार को तेजी की तरफ एक तरीके से कह सकते हैं जो बाजार को तेजी की तरफ लेकर गए?
1: प्राची, अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से एक जो सेंस ऑफ रिलीफ रहा है बाजार के ऊपर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो हॉर्मोन्स खुल गया है, कॉन्फ्लिक्ट जो है थोड़ा ईज हो गया है, ऑयल प्राइसेस जो एक हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है।

0: वो उसके दाम जो है ईज कर रहे हैं तो उसका एक मिला जुला असर है. दूसरा जो बाजार में एक ऑप्टिमिज्म है मॉनसून को लेकर के और जून का जो आप कहें कि तिमाही जो खत्म हुआ है उसमें कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को लेकर के थोड़ा ऑप्टिमिज्म बना हुआ है क्योंकि ऐसी आशा की जा रही है ऐसी उम्मीद है कि जो ये वेस्ट एशिया का क्राइसिस था उसका उतना खराब असर शायद अर्निंग्स पर नहीं होगा जैसी पहले आशंका की जा रही थी. क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह के आंकड़े आए हैं अगर आप जीएसटी लें या डायरेक्ट टैक्स के आंकड़े लें तो दोनों आंकड़े जो हैं ये दर्शाते हैं कि शायद कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं जैसी आशंका थी वैसी नहीं बेहतर ही रहेंगे. तो वो जो ऑप्टिमिज्म है वो बाजार में कुछ हद तक दिखाई दे रहा है.
1: Deepshikha, if I may ask you, you mentioned about the first quarter earnings. Of course, it's coming on the 11th. It starts on the 11th of this month. But I would like to draw your attention to the IT sector in particular. You know, the IT kind of in the past 4 or 5 months now, especially after the West Asian crisis, we saw kind of, you know, declining by quite some considerable points. And now, again, you know, you mentioned about the opening of Hormuz and all, tensions easing, so on and so forth. But still, we see that the IT is still kind of being a laggard. So what sense do you get out of this?
0: Nishit, if you look at the tech sector as a whole, and not just in India, if you look at tech sector in other markets as well, other Asian markets, you've seen that this sector has been quite unnerved and there has been a lot of upheaval which it has witnessed, largely because of what the AI impact would be. There's been an AI rally in the West. Some of the companies are sort of making strides towards aligning with AI. But again, you know, there is apprehension about what would be the impact of AI, especially on the tech sector. So I think that is playing out in a big way. I think once there is clarity on, you know, once these large IPOs sort of come in the US markets of large AI companies, I think then possibly this hype around the AI and its impact sort of make clear. And then probably investors can take a more sort of reasoned view and they can get a very clear picture of what is going to happen, what would be the way forward for the tech sector.
1: We'll come back to that. But before that, we are joined in by our first caller from Delhi, Amit Jha. Amit, welcome.
2: Namaskar, sir.
1: Namaskar.
2: Deepshikha, madam, namaskar, ma'am.
0: Namaskar, Amit Ji.
2: एक तो निशित सर ने सवाल पूछ लिया है किससे रिलेटेड, मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ मेटल के बारे में पूछ रहा था मैम कि हालिया दिनों में पिछले दो तीन महीने में मेटल के स्टॉक्स काफी मैम, तो क्या रीजन था? दूसरी चीज, जैसे आपने कॉर्पोरेट अर्निंग की बात बताई तो इतने सारे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुए हैं तो क्या हमारी कंपनियां फिर भी उसको डिस्काउंट कर देगी इन प्रभावों को? धन्यवाद.
0: अमित जी, पहला आपका सवाल था जो मेटल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. तो मेटल क्षेत्र में अगर आप उसको दो भाग में बांट ले, एक तो आपके फेरस मेटल्स हैं और नॉन फेरस मेटल्स हैं. तो फेरस में आप देखें जो केपेक्स एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर रही है सरकार, उसका फायदा उसको काफी हद तक मिलेगा और वो असर दिख रहा है इन क्षेत्र के स्टॉक्स पर. और अगर आप नॉन फेरस में देखें तो खासतौर से एल्यूमिनियम में जो है वो तेजी आई है क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत सारी ऐसे सेक्टर्स में होता है, ईवी इलेक्ट्रिकल्स में, जहां पे इस्तेमाल जो है उसका बढ़ा है और खपत बढ़ रही है, डिमांड काफी है, तो इसलिए उसका फायदा इस क्षेत्र को मिल रहा है. कॉपर में काफी उतार चढ़ाव रहा है और वो काफी हद तक डिमांड जो है इकोनॉमी में कैसी रहती है उस हद तक वो दर्शाता है. और दूसरा आपका जो सवाल था परफॉर्मेंस,
1: यस, ही वाज टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट अर्निंग्स,
0: कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर के, तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि एक ऑप्टिमिज्म है कि उतनी इम्पैक्ट नहीं हुई है जो कंपनीज थी, जो हालांकि सप्लाई चेन्स काफी हद तक डिसरप्टेड थी, तो उम्मीद कर रहे हैं कि उतना ज्यादा जो है नुकसान नहीं हुआ है अगर आप आंकड़ों को देखते हैं तो उसी हिसाब से शायद बाजार जो है वो सेंटिमेंट दर्शा रहा है.
1: Right.
3: दीपशिखा, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी बैंकिंग सेक्टर की तरफ. बहुत हमारा हम देखिए बहुत सेलिब्रेटेड सेक्टर रहा है कुछ पास्ट वीक्स में. तो इसे आप अब क्या ये इस तरीके से ही रहेगा या इसमें आप किसी तरीके के उतार चढ़ाव को आप देख पा रही हैं आने वाले समय में या निवेशकों के लिए? साथ ही मैं आपसे एक राय भी जानना चाहूंगी मगर इसके बाद.
0: प्राची, अगर आप देखें फाइनेंशियल सेक्टर जो है काफी समय से एक मतलब पॉजिटिव रहा है और काफी निवेशकों को आकर्षित भी किया हुआ है
3: जी.
0: तो ब्याज दरों का मूवमेंट और दूसरा हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका अपना जो मजबूती है अपना जो परफॉर्मेंस है अगर आप देखेंगे तो बहुत ही उसमें इम्प्रूवमेंट रहा है उनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में. तो वो सब जो है वो इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है. कुछ निजी क्षेत्र में कुछ इश्यूज आए थे लेकिन वो कुछ हद तक उनके मैनेजमेंट्स जो है वो डिस्पेल कर चुके हैं
3: जी.
0: तो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर जो है अर्थव्यवस्था में ग्रोथ जो है उम्मीद की जाती है कि गति उसकी बढ़ेगी तो फाइनेंशियल सेक्टर भी उसको सपोर्ट में आगे उसी हिसाब से बढ़ेगा और उसका असर हमें बाजार में दिखाई दे.
1: या प्राची, यू टॉक्ड अबाउट द बैंकिंग सेक्टर बट दीपशिखा, just a couple of days back we saw Prime Minister inaugurating that Sanand plant of the semiconductors, you know, wherein India would be producing that plant, the CG plant would be producing more than 5 billion chips, you know, annually, and that's humongous number considering it's more important, significant rather, when we consider our dependency on, you know, on the chip imports, especially from countries like China and Taiwan, so on and so forth. Because China, as we all know, can be, you know, a very truant kind of a player, you know, every time, all the time. So now, with this semiconductor plant coming up, you know, in big numbers, how do you see this sector playing out? And if I may ask you, what sector or what kind of stocks would you mention? I'm not asking about particular stock names and all, but do you see this sector kind of coming up in the coming times, big time?
0: Nishit, you know, it's an interesting sector if you look at and the semiconductor, the push that has come from the government side is largely because India wants to remain independent. It wants to ensure that its supply chains are totally insulated. And that is where the entire push is coming from because we were totally dependent for chip manufacturing. Chips are used in everything
1: across the board, yes.
0: Across sectors.
1: Yes.
0: So definitely it is a sunrise sector, but we also have to keep in mind one fact, which is technology can become redundant very, very soon. The kind of development that is happening in the chip technology, it is very, very rapid. So if we definitely are able to keep pace with that, then definitely it's a sector which can be looked at. Apart from that, you have drugs and pharma, you have defense, you have some of the sectors which have a interplay with infrastructure development.
1: Electronics,
0: definitely.
1: Yes.
0: So these sectors would definitely have a play going forward. Monsoon, if it as is expected, that if it improves, then definitely the demand would be strong. Then some of the sectors which have interplay in the rural demand sector, the consumer sectors, the FMCG.
1: Absolutely.
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में आप अपना सवाल लेकर के हम सबसे जुड़ सकते हैं. आप हमें नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. हमारे साथ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार जी जुड़े हुए हैं जो आपके तमाम सवालों के तमाम जवाब देंगी. आइए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. आज एशिया शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुआ. ताइवान का ताइएक्स और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आधा प्रतिशत गिरा जबकि चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स और जापान का निकेई मामूली गिरावट के साथ लगभग स्थिर रहा. उधर हांगकांग का हैंगसेंग 1% से अधिक बढ़ा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.3% की तेजी आई. दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं. केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: धन्यवाद मैडम. ये हमें दो बातें पूछनी है. यूलिफ की परिभाषा आप हमें थोड़ा खुल के बताएंगे, क्योंकि हर बार कार्यक्रम में यही बताया जाता है आप यूलिफ के चक्कर में ना फंस जाएं. जैसे बैंकों में जाते हैं तो हमें कुछ नई नई स्कीम बताते हैं, एफडी के एफडी बनाने जाते हैं, तो ये यूलिफ क्या चीज होती है? आप लोग हमें खासकर यही कहते हैं कि यूलिफ मत लेना आप. और दूसरा सवाल मेरा यह है कि सरकार की तरफ से अभी ये सुनने में आया जाता है कि इन्होंने महंगा तेल खरीदा था. वो महंगा तेल खरीदा था कितने समय तक, ये तेल वो खत्म हो जाएगा, जो सस्ता तेल आया तो आने वाले समाज में लोगों को सस्ता तेल पेट्रोल मिलना शुरू होगा. धन्यवाद
0: केशव जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए. मैं आपका दूसरा सवाल सबसे पहले ले रही हूँ, कच्चे तेल के लिए. तो अभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें काफी हद तक लॉस बना हुआ है. अगर ये दाम गिरे हुए रहते हैं कुछ अगले 2-3 महीने तक, तब ये लॉसेस जो उनके बुक्स पर हैं वो शायद कवर हो जाएंगे और फिर वो उस स्थिति में होंगे आपको दाम घटाने के. फिलहाल उनकी स्थिति ऐसी नहीं है जो दाम घट पाए. यूलिप्स की आप बात करें और सभी लोग आपको एडवाइस करते हैं उसके खिलाफ, तो यूलिप में जो समस्या रही है, एक तो आपका बहुत लॉन्ग टर्म निवेश होता है. अगर आप उसको बीच में से बाहर निकालना चाहते हैं तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, आपको नहीं मिल सकता है. दूसरा, एक वो मिक्स प्रोडक्ट था, उस निवेश के साथ साथ आपको इंश्योरेंस देता था. तो कहा यह जाता है कि या तो आप एक निवेश के लिए आप अलग एक प्रोडक्ट लें और इंश्योरेंस के लिए आप एक प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट लें. इंश्योरेंस में आप निवेश नहीं घुसा सकते हैं क्योंकि इंश्योरेंस का मकसद जो है वो अलग होता है.
1: नेक्स्ट कॉलर इज सेतुपति फ्रॉम चेन्नई. सेतुपति.
5: गुड इवनिंग टीम.
1: गुड इवनिंग.
0: गुड इवनिंग सेतुपति.
5: Yeah, this is regarding the ethanol 90% and what time it will be implemented and how much gain we can get, for example, in 0 to 3 years time.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Ethanol, I think government is very clear on the implementation plan. They have given some submissions before the Supreme Court also. Government is very, very upbeat on it. There are some issues which have been reported, but I think government has sort of...
1: In fact, they have
0: clarified in a very big way.
1: In fact, Devshikha, if I may add to that, there is no fixed kind of a timeline for that, for the ethanol thing to come up. But yeah, pretty soon, Setupati, if I may say, it's going to be implemented pretty soon in a pretty quick timeline.
3: अन्य खबरों में, श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले इंडोनेशिया में जकार्ता पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने 3 देशों के हिंद प्रशांत दौरे की शुरुआत की. ये प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की चौथी यात्रा है और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किए जाने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है. इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और आपसी साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा भी करेंगे.
1: Yeah, Deepshikha, if we talk about Prime Minister's visit to Indonesia, and of course, you know, the Australian tour and the New Zealand tour is also to come up. If we specifically talk of Indonesia, the India-Indonesia ties has been been upgraded to comprehensive strategic partnership in 2018 itself, and the Prime Minister in his departure statement as well said that we are going to take forward this, you know, the partnership to the next level. People-to-people ties, trade, defense, security, so on and so forth. How do you see this?
0: No, absolutely. Indonesia, if you look at even within the India-ASEAN, framework, Indonesia is now one of the number one trading partners. Mm. India imports a lot from Indonesia. So definitely, and what we are trying to do is, and what India has been trying to do is, work with its Asian partners, create that ecosystem within the Asia. You know, we had the Look East policy, and I think all the entire Indian Ocean initiative.
1: Mahasagar.
0: Mahasagar.
1: Yes.
0: So,

0: on a short range, I mean, say short period of 4 to 5 months for defense sector and gold.
1: Sachinji, you know, you are looking at a very short-term horizon for the defense sector. But if you look at, you know, the emphasis that the government is giving to the defense, it is definitely a sector that should be looked at from medium to long-term. And for short-term, the issue is defense sector stocks have already seen valuations rise. So I would not recommend a very short-term view on this sector.
2: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और नोएडा से हमारे साथ आकाश जुड़ रहे हैं. आकाश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हेलो, गुड इवनिंग मैम, सभी को
2: गुड इवनिंग.
3: आकाश नोएडा से बोल रहा हूँ. मेरा सवाल ये है, जैसे मैम इस टाइम नोएडा वो हमें खरीदना ठीक है और जो रखा हुआ है वो बेच भी सकते हैं नहीं, और चांदी भी, और जिसमें मैम जैसे पहले ज्यादा की जैसे सोना रेट बढ़ गए थे तो सभी ने मैम लेके रख लिया था, अब जैसे रेट डाउन भी हो गए हैं तो क्या हम बेच सकते हैं नहीं, या और भी डाउन हो सकता है रेट अभी या नहीं, या बढ़ भी सकता है बाद में, दोनों बातें हो सकती है, आप बताइए मैम.
1: आकाश जी, सोना जो है अगर आपने देखा कुछ समय से जो है काफी उसमें बहुत तेजी से वो बढ़ा था, और क्राइसिस जब स्टार्ट हुई है, कॉन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद बीच में थोड़ी गिरावट आनी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर अगर आप देखें तो थोड़ा सा चढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि जब चढ़ना शुरू हुआ था पहले तो इसलिए था क्योंकि बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स थे वो खरीद रहे थे, और अब दोबारा से ऐसा ट्रेंड जो है देखा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक्स दोबारा से खरीद रहे हैं सोना, तो उम्मीद की जाती है कि आगे जो है अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं तो सोना जो है उसमें बढ़त हो सकती है.
4: Right, and moving on to oil sector now. The global crude oil prices fell moderately today after OPEC Plus agreed to further increase its output targets from August. Brent crude was trading 0.2% down at $71.95 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading over 0.2% down at $68.55 per barrel when reports last came in. Deepshika, your comments on crude, especially, you know, with the opening of Hormuz, even if it's a partial opening, and also, you know, the easing of tension, almost from around $120 to $71, and the WTI trading at around $68. How do you see this panning out in the coming days? Would it be seeing another spike or coming down to around $50 or $55?
1: Well, I think for Indian economy, crude sliding to these levels, definitely a very good news, very positive news. But if you see, you know, the kind of destruction that the entire oil and gas infrastructure saw during the conflict, there is apprehension that the supplies may not rise to pre-conflict levels. So while you know, OPEC has said, OPEC Plus, they want to, they will boost supplies. There's Venezuela crude also, which is sort of coming to the market, which will keep the pressure on in the crude market. It is expected that it may sort of not really dive below, but remain at these levels.
4: And in the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 0.3% down at 147,410 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.2% down at 237,330 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi commodity exchange mein August anubandh wala sona 0.3% ghatkar 147,000 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, jabki September anubandh wali chandi 0.1% ludakkar 237,069 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी. अधीपशिखा कार्यक्रम में आने, हमारे श्रोताओं के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: धन्यवाद प्राची.
4: थैंक यू दीपशिखा. एंड बिफोर वी क्लोज, द रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन. The benchmark domestic indices continue the upward trend. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 24,400. Asian stock market indices display mixed trend. And global crude oil prices decline. And that's all we have in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar.

0: along with Prachupriya signing off. Goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें
2: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है ये। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। 11:46 और 24 सेकंड हो चुके हैं। अभी अभी जो आपने गीत सुना वो आशा जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में था। फिल्म का नाम है अंदाज अपना अपना और आज आपके साथ गीत मेरे मनमीत में है अर्पना। अगला गीत आप सुनेंगे साधना सरगम की आवाज में होगा। फिल्म का नाम है हम है राही प्यार के। लीजिए आनंद इस गीत का। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है ये।

11:55 हो चुके हैं। अभिजीत की आवाज में फिल्म यस बॉस से ये गीत अभी आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। अगला गीत आप सुनेंगे सोनू निगम की आवाज होगी, फिल्म का नाम है संघर्ष। इस गीत के बाद आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार और गीत के साथ ही अर्पणा को दें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर खतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। श्री जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला लिया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बताया है कि सूडान में पिछले 6 महीनों से जारी युद्ध में 300 से अधिक बच्चे हताहत हुए हैं, जिनमें से अधिकतर ड्रोन हमलों के शिकार हुए। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने उत्तरी कोर्दोफान की राजधानी अल ओबेद में बड़े पैमाने पर संभावित अत्याचारों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। वैश्विक नेताओं ने दोनों पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और युद्ध अपराधों को रोकने की अपील की है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अब से थोड़ी देर में 12:30 बजे से पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मेक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई को 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 12:10:59 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ

सावन को आने दो फिल्म से आपने ये गाना सुना जसपाल सिंह की आवाज में गौहर कानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजकमल ने उमस भरी गर्मी बारिश का बेसब्री से इंतजार शनिवार और रविवार की छुट्टियों के बाद फिर वही सोमवार की भागदौड़ दिन भर की व्यस्तता और थकान के बाद अब जाकर मिले हैं ये सुकून भरे लम्हात जहां मन ठहर सा गया है ऐसे ही शांत पलों में पुराने गीतों की मधुर धुनें दिल को सुकून देती हैं और दिन भर की सारी थकान जैसे हवा हो जाती है

पहली फिल्म का गाना आपने सुना हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

बदलते रिश्ते फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आजकल अपने पसंदीदा गीत सुनने के अनगिनत जरिए मौजूद हैं। मोबाइल, म्यूजिक एप्स और इंटरनेट पर तो बस एक स्पर्श की देरी है और मनचाहा गीत हमारे सामने होता है। लेकिन इन सब के बीच भी जब अचानक रेडियो पर वही पसंदीदा नगमा सुनाई दे जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। उस पल की खुशी, वो अनायास मिलने वाला एहसास और उस गीत का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। शायद इसलिए कि रेडियो सिर्फ गीत नहीं सुनाता बल्कि उनसे जुड़ी यादों, भावनाओं और अनकहे एहसासों को भी फिर से जिंदा कर देता है।

फासले फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। शहरयार ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरी ने।

वक्त हुआ है 12:32 और ठीक 39 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी आपके साथ

फासले फिल्म से गाना आपने सुना लता मंगेशकर किया माफ कीजिएगा शंकर हुसैन फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज में जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने रेडियो पर अचानक अपना पसंदीदा गीत सुनना किसी खूबसूरत तोहफे से कम नहीं होता जैसे कोई बिना बताए हमारी मनपसंद चीज हमें उपहार में दे दे और हमारी खुशी का ठिकाना ना रहे ऐसे छोटे छोटे सरप्राइज ही तो जिंदगी को मुस्कुराने की वजह देते हैं इसलिए रिश्तों में बड़े नहीं छोटे छोटे तोहफों का आदान प्रदान भी होता रहना चाहिए क्योंकि तोहफों की कीमत नहीं उसके पीछे छिपा अपनापन और स्नेह मायने रखता है किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लाने के लिए कभी कभी बस एक छोटा सा उपहार या प्यार भरा एहसास ही काफी होता है

रजनीगंधा फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। और हाँ, हम जब हम छोटे छोटे तोहफों की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो बहुत महंगे हों। एक छोटा सा रजनीगंधा के फूलों का गुलदस्ता भी किसी के चेहरे पर अनमोल मुस्कान बिखेर सकता है। ये जेब पर भी ज्यादा भारी नहीं पड़ता, लेकिन इसकी महक दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है।

बाजार फिल्म से आपने ये गजल सुनी लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाज में मखदूम मोहिउद्दीन ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने रात की खामोशी में अपनी भीनी भीनी खुशबू बिखेरने वाला रजनीगंधा फूल सचमुच अनोखा है दुनिया की महंगी से महंगी खुशबुएं भी इसके सामने फीकी सी लगती हैं एक बार इसे आजमा कर तो देखिए एक बार किसी को तोहफे में दे कर तो देखिए यकीन मानिए इसकी महक इतनी मनमोहक होती है कि रात भर आपका साथ निभाती है और सपनों तक को महका देती है

सिलसिला फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरी ने

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 16 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी-बारी से समाचार समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही युवराज और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात का अवसर मिला। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य

0: कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे, जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। सऊदी अरब ने एक नई सेवा का प्रायोगिक शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत यात्री एकीकृत पैकेज के जरिए अपना वीजा, उड़ान और होटल बुक कर सकेंगे। खाड़ी देश के पर्यटन मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब का पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और पैकेज वीजा देश की यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said, India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee yesterday, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर मेट किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा ऑफ बहरीन एंड डिस्कस्ड वेज टू फर्दर स्ट्रेंथन द बायलैटरल पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। डॉक्टर एस जयशंकर अराइव्ड इन बहरीन फ्रॉम कतार on the second leg of his four-nation visit to the Gulf region, which also includes Kuwait and Oman. In a post on X, Dr. S. Jaishankar said he was honored to have an audience with King Hamad bin Isa Al Khalifa. He also said it was a privilege to meet Crown Prince and Prime Minister Salman bin Hamad Al Khalifa during the audience. The minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to the King. Union Railways Minister Ashwini Vaishnav has virtually inaugurated a new train service between Tanakpur in Uttarakhand and Hazur Sahib at Nanded in Maharashtra, along with the extension of the Tanakpur-Pilibhit rail service up to Shahjahanpur. He said the new service fulfills a long-pending demand of people living in the Terai region of Uttarakhand. Central Bureau of Investigation has conducted searches at 26 locations across 11 states and union territories in connection with four criminal cases pertaining to misappropriation of funds in Border Roads Organization. These states and union territories are Jammu and Kashmir, Ladakh, Delhi, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Assam, Arunachal Pradesh, and Nagaland. Several incriminating documents and digital evidence have been recovered during the searches and investigation is continuing. In FIFA World Cup, round of 16 match between Portugal and Spain is underway at Arlington in US. Another round of 16 match will be played between co-host US and Belgium in Seattle this morning at 5:30 a.m. Indian time. In boxing, India continued its impressive campaign at the Under-23 Asian Championships in Jakarta yesterday, with Asian champion Vishwanath Suresh, Ganga, Hitesh and Tanu registering commanding 5-0 victories in their respective bouts. And that

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ

एक दिल सौ अफसाने फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने तुम ही तुम हो मेरे जीवन में जैसे इस चमन में फूल ही फूल खिले हों तुम्हारी मुस्कान से हर सुबह सुनहरी लगती है और तुम्हारी याद से हर शाम सुरमई हो जाती है जीवन की राहों पर जब भी नजर उठती है हर दिशा में तुम्हारा ही एहसास साथ चलता है जैसे फूल अपनी खुशबू से पूरे उपवन को महका देते हैं वैसे ही तुम्हारा स्नेह मेरे जीवन के हर पल को महका देता है

बॉयफ्रेंड फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। उस नजर को सलाम जिसमें अपनापन भी है, स्नेह भी है और अनकही मोहब्बत का एहसास भी। एक ऐसी नजर जो बिना कुछ कहे दिल की बात कह जाती है, थके हुए मन को सुकून दे जाती है और जिंदगी के हर पल को खूबसूरत बना देती है।

हसीना मान जाएगी फिल्म से ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और रफी की आवाज में अख्तर रोमानी ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने जब प्रेम सच्चा हो तो कदम सोचकर नहीं दिल की धड़कनों के साथ चल पड़ते हैं उस बेखुदी में मंजिल से ज्यादा साथी का साथ मायने रखता है

प्रोफेसर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और रफी की आवाज में अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने

वक्त हुआ है 1:31 और ठीक 46 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

साथी फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। इसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया नौशाद अली ने। जब कोई दिल में इस तरह बस जाए कि हर ऋतु उसी की खुशबू बन जाए, तब प्रेम शब्दों से नहीं मुस्कुराहटों और एहसासों से जिया जाता है।

लव मैरिज फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने झूमती रात की खामोशी में चांद भी जैसे मुस्कुरा रहा है दिल की अनकही बातें हवाओं के संग बह रही हैं और हर पल प्रेम की एक नई कहानी बनता जा रहा है

असली नकली फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने सच्चे प्रेम में विश्वास और समर्पण जितना गहरा होता है उतनी ही गहरी उसे संभाल कर रखने की चाह भी होती है प्रेम केवल खुशी का नाम नहीं बल्कि अपने प्रिय के प्रति संवेदनशीलता चिंता और उसके साथ हर पल बिताने की आकांक्षा का भी नाम है

आरती फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता की आवाज में मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने जिससे सच्चा प्रेम हो उसके बिना ना मन को चैन मिलता है ना जीवन की कोई खुशी पूरी लगती है उसकी याद हर पल साथ रहती है और मिलन की चाह मन में हमेशा बनी रहती है

महल फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता मंगेशकर की आवाज में साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने वक्त हुआ है 1:53 और ठीक 37 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी-बारी से समाचार समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विदेश मंत्री श्री जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करने के लिए चारों खाड़ी देशों के अपने समकक्षों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वे पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का यह दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा शहर जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे, जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीमा सड़क संगठन से जुड़े 4 आपराधिक मामलों के संबंध में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। एजेंसी के अनुसार इन मामलों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और इंजीनियर रैंक के कुल 10 अधिकारियों के साथ कुछ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। ये मामला लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट योजक के अंतर्गत अस्थायी श्रमिकों की तैनाती और फर्जी श्रमिकों के नाम पर किए गए भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है। सऊदी अरब ने एक नई सेवा का प्रायोगिक शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत यात्री एकीकृत पैकेज के जरिए अपना वीजा, उड़ान और होटल बुक कर सकेंगे। खाड़ी देश के पर्यटन मंत्रालय ने ये जानकारी दी। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब का पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और पैकेज वीजा देश की यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ

दिले नादान फिल्म से आपने गाना सुना लता और किशोर की आवाज में नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने रात सुरमई हो चांदनी अपनी नरम चादर बिछा रही हो और हवाओं में फूलों की भीनी भीनी महक खुली हो ऐसे लम्हों में ये गीत सिर्फ सुनाई नहीं देते वो दिल में उतर आते हैं

नूरी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। इसे लिखा जानेसार अख्तर ने और संगीत दिया खयाम ने। सुरमई रात ही रात की अपनी ही एक खामोश जुबान होती है, चांद की चांदनी, तारों की टिमटिमाहट और ठंडी हवाओं की सरगोशियां मिलकर ऐसा समा रच देती हैं जहां हर धड़कन किसी भूले बिसरे गीत का सुर बन जाती है।

कुदरत फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कभी कभी किसी की एक मुस्कान, एक नजर या एक मुलाकात जिंदगी के हर रंग को और भी गहरा बना देती है। दिल अनजाने ही किसी की मोहब्बत के जादू में बंध जाता है और फिर हर मौसम, हर हवा, हर धड़कन उसी का एहसास कराने लगती है।

राम तेरी गंगा मैली से आपने गाना सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में रविंद्र जैन ने इसे लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने

वक्त हुआ है 2:33 और ठीक 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

आशा फिल्म से आपने गाना सुना। लता और रफी की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुर से जीवन संगीत बना और संगीत से हर एहसास को एक नई पहचान मिली। कुछ धुने मुस्कुराना सिखाती हैं, कुछ यादों को फिर से जगा देती हैं, तो कुछ चुपचाप दिल की गहराइयों में उतर जाती है। इन्हीं मधुर सुरों के साथ जीवन के हर रंग को महसूस करें, जहां हर गीत एक कहानी है और हर कहानी में धड़कता है एक एहसास।

हीरो फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और मनहर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। डिंग डोंग ओ बेबी सिंग अ सॉन्ग, ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि प्यार और खुशियों का निमंत्रण है। आज की ये शाम मुस्कुराहटों, मधुर सुरों और दिलों की धड़कनों के नाम है। आइए संगीत की लय में खो जाएं और इस खूबसूरत शाम को प्यार के रंगों से सजा दें।

लम्हे फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरी ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 24 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही वंदना चूक के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विदेश मंत्री श्री जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए चारों खाड़ी देशों के अपने समकक्षों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वो पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा जाएंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीट राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीट के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। जम्मू कश्मीर से अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात यूएई को निर्यात की गई है। इससे किसानों के लिए नए अवसर खुले हैं, कृषि निर्यात को बढ़ावा मिला है और भारतीय उत्पादों की असाधारण गुणवत्ता विश्व स्तर पर प्रदर्शित हुई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने जम्मू कश्मीर से यूएई को प्रीमियम अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप की सुविधा प्रदान की। ये केंद्र शासित प्रदेश के बागवानी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीमा सड़क संगठन से जुड़े 4 आपराधिक मामलों के संबंध में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। एजेंसी के अनुसार इन मामलों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और इंजीनियर रैंक के कुल 10 अधिकारियों के साथ कुछ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। ये मामला लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट योजक के तहत अस्थायी श्रमिकों की तैनाती और फर्जी श्रमिकों के नाम पर किए गए भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said, India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee yesterday, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
2: आज देश की धरती पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत एक महान देशभक्त भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं
1: यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज सेड दैट इंडियास लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर व्हिच करंटली एक्सपोर्ट्स गुड्स वर्थ अराउंड 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स हैज सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल विद 38 डेवलप्ड कंट्रीज ओपनिंग देयर मार्केट्स टू इंडियन प्रोडक्ट्स थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स These countries include the United Kingdom, Oman, the UAE, and several others. Addressing the Council for Leather Exports National Export Excellence Awards 2024-25 in New Delhi yesterday, Mr. Goyal said that several countries, including Ecuador, are also keen to conclude free trade agreements with India, creating new opportunities for Indian exporters. Reserve Bank of India has announced that the government will auction dated securities worth 32,000 crore rupees on Friday to raise funds. The auction will be settled on the 13th of this month. It includes the reissue of the 6.36% government security 2031 worth 21,000 crore rupees and the 7.71% government security 2066 worth 11,000 crore rupees. The government has also kept the option open to accept additional subscriptions of up to 2,000 crore rupees for each security. According to the RBI, the auction will be conducted through its Mumbai office using the multiple price method. India Meteorological Department issued a red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Saurashtra, Kutch, Madhya Maharashtra, coastal Karnataka for today. The Met Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, interior Karnataka, Madhya Pradesh, Vidarbha, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. In the FIFA World Cup, Spain defeated Portugal 1-0 in a closely fought round of 16 clash in Dallas, Texas to book their place in the quarterfinals. Spain's Mikel Merino scored the decisive goal in the 90th minute plus stoppage time. In the other round of 16 fixture, co-hosts the United States will take on Belgium in Seattle this morning at 5:30 a.m. Indian time. The match will decide the final quarter final spot. In boxing, India continued its impressive campaign at the Under-23 Asian Championships in Jakarta yesterday with Asian champion Vishwanath Suresh, Ganga Hitesh and Tanu registering commanding 5-0 victories in their respective bouts. And that is the end of this news.

हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत युगल गीतों को सुनवाने के लिए मैं आ गई हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग। नमस्कार।

0: हम भी यही चाहते हैं
1: कि आपका प्यार जिससे है वो आज भी रहे और कल भी रहे। ये गीत आपने सुना जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे तेरे मेरे सपने फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। नीरज द्वारा लिखा ये गीत है और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

दोस्तों, दोस्ती में यही फायदा होता है कि हम आपस में एक दूसरे की बात का यकीन किया करते हैं और पहले भी किया करते थे। जो बात कह दी बस पक्की हो गई।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया ये गीत आपने सुना। फिल्म का नाम तो आप जान ही गए होंगे, जी हाँ, ताजमहल फिल्म से ये गीत था। साहिल लुधियानवी का लिखा गीत था और रोशन का संगीत।

दोस्तों आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम गोल्ड चैनल और कार्यक्रम चल रहा है हमराही।

0: तीन देवियां फिल्म से भी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ गीत। मजर सुल्तानपुरी ने लिखा था और संगीत दिया था एसटी बर्मन ने। अगला गीत आप सुनेंगे सच्चा झूठा फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ है, इंदिवर की रचना है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: यूं ही तुम

और अब अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान, लता मंगेशकर मुकेश और साथियों का गाया हुआ, वर्मा मलिक के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है हमराही और इस कार्यक्रम के अंतर्गत युगल गीत आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चुक के साथ।

चोरी चोरी। इस फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ। हंसल जयपुरी की शब्द रचना थी और संगीत था शंकर जयकिशन का।

अगला गीत आप सुनेंगे राज फिल्म से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज है, गुलशन बावरा का गीत है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

दोस्तों, दिल में कितनी बातें होती हैं ना, कुछ बातों को आप अपनों से साझा कर देते हैं और कुछ हम अपने जहन में

पाकर चलते रहते हैं, लेकिन जो असली दोस्त होते हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो आपका साथ नहीं छोड़ते और ना ही आपकी बात का तमाशा बनाते हैं, होता है ना ऐसा, वही सच्चे दोस्त होते हैं। और अब अगला गीत ये रास्ते हैं प्यार के, इस फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और रवि का संगीत।

दोस्तों, अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रही हूँ आया सावन झूम के। इस फिल्म से गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, आनंद बख्शी की लिखी रचना है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दोस्तों जी तो हमारा भी नहीं करता कि हम आपको छोड़कर जाएं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। समय कह रहा है कि अब चले जाना चाहिए, लेकिन अगले कार्यक्रम में जरूर मिलेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर

सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वो पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा जाएंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीट राज्यसभा सदस्य सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। ब्रिक्स की नशीली दवाओं के खिलाफ एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कल गुवाहाटी में शुरू हुई। गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। श्री गर्ग ने कहा कि आधुनिक मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क, डार्क नेट प्लेटफॉर्म, सिंथेटिक ड्रग्स, नए मनोसक्रिय पदार्थों और समुद्री मार्गों के माध्यम से सीमाओं के पार काम करते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। यूक्रेन ने रूस में साइबेरिया के ओम्स्क स्थित सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। ये युद्ध के दौरान यूक्रेन के सबसे लंबी दूरी के हमलों में से एक है। स्थानीय अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने एक बयान में कहा कि हमले के कारण ओम्स्क रिफाइनरी में आग लग गई। ये रिफाइनरी यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र से लगभग 2700 किलोमीटर दूर और कजाकिस्तान के साथ रूस की सीमा के करीब है। इस क्षेत्र के गवर्नर विटाली खोत्सेनको ने कहा कि रूसी वायुसेना ने हमले में शामिल अधिकांश ड्रोनों को नष्ट कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समयानुसार आज सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं आपके साथ रहूंगी 4:59 तक गीतों के साथ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

कुछ गीत तो ऐसे होते हैं दिल करता है हम भी साथ साथ गुनगुनाते रहें, मना किसने किया है। जी हाँ, गुनगुनाइए ना। दिल ने फिर याद किया इस फिल्म से आपने गीत सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, सोनिक अमिका संगीत था और जीएल रावल की रचना थी। अगला गीत आप सुनेंगे फागुन फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ है, कमर जलालाबादी की रचना है और धुन तैयार की है ओपी नैयर ने।

सो कितने अच्छे लगते हैं ना ये गीत, और जब जब सुनते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमें इनकी लाइंस जो है बहुत अच्छे तरह से रट गई हैं। और पहले तो भगवान कृष्ण के जो भजन है लोग इन गीतों के माध्यम से इन्हीं धुन पर ही बना लिया करते थे। खैर, अगला गीत आप बताएंगे कि ये कौन सी फिल्म का है।

आपको मैं बता देती हूँ, ये फिल्म थी नई राहें और आवाज हेमंत कुमार की और लता मंगेशकर की थी। गीत को लिखा था प्रेम धवन ने और संगीत से संवारा था रवि ने।

दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम में गीत सुन रहे हैं आप अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ और मुझे उम्मीद है कि आप इन गीतों को सुनते हुए आनंद उठा रहे होंगे और साथ ही साथ गुनगुना भी रहे होंगे।

मदारी फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ। फारूक कैसर ने गीत के बोल लिखे थे और तर्ज बनाई थी कल्याण जी, आनंद जी ने। और अब अगला गीत आप सुनेंगे धरती कहे पुकार के। इस फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ, मोहम्मद रफी का गाया हुआ है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

सच में जो मेहनत करना जानता है, धरती उसे पुकार कर कहती है कि मुझे छू लो। और जो मेहनत करता है ना दोस्तों, वो बहुत कुछ सहन करके आगे बढ़ जाता है और अपना नाम रोशन कर ही देता है। पैसों से शोहरत नहीं बनाता, बल्कि कर्म करके ही शोहरत कमाई जाती है।

दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि जब हमारे साथ कोई साथ देता है किसी काम में और साथ देने से हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और हमें साथ मिल जाता है और समय की भी बचत होती है। घर में भी हम लोग जब काम करते हैं, हमारे घर के सदस्य जब आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। साथ ही साथ समय की भी बचत होती है और काम जल्दी निमट जाता है, फिर हम आराम से बैठ भी सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप को जहाँ भी मौका मिले आप अपनों की तो कम से कम ज़रूर मदद कीजिए ताकि हर कोई एक दूसरे को सहारा समझे और एक दूसरे का सहारा बने। हर कोई ये सोचे कि कोई काम करना किसी के लिए या किसी के ऊपर बोझ नहीं है, हमारे अपने हैं जिनका हम साथ दे रहे हैं।

यादगार फिल्म से अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ। इंदिवर ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी कल्याण जी, आनंद जी ने। अगला गीत आप सुनेंगे बैजू बावरा फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। शकील बदायूनी की रचना है और संगीत नौशाद का।

जी हाँ दोस्तों, साथ ऐसा ही होना चाहिए कि हम ब्रह्मांड में दी गई चीज़ों का उदाहरण दे सकें। और अब अगला गीत श्री 420 फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों की आवाज़ में। आपको ज़रूर समझ आ गया होगा ये कौन सा गीत बजने वाला है।

दोस्तों अब अगला गीत आप सुनेंगे। आपको ये गीत पसंद जरूर आएगा और ये कहना पड़ेगा कि दुनिया में बहुत सारी बातें होती हैं और इस फिल्म में, और फिल्म का नाम तो आप जान ही जाएंगे कि ये कौन सी फिल्म है, और साथ ही ये भी सोचना पड़ेगा कि जब इस गीत को लिखा गया तो लिखने वाले ने भी ज़रूर ईश्वर की रचना को बहुत सोच विचार किया होगा, और ईश्वर ने भी तो सोचा होगा कि मैं जिस इंसान से इतनी उम्मीद करता हूँ, यहाँ से भेजता हूँ, वो जाकर भूल जाता है क्या? आपने ज़रूर अंदाज़ा लगा लिया है कि कौन सी फिल्म है, किसका गाया हुआ है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, मुकेश का गाया ये गीत है।

दोस्तों, इस गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे थे और मुकेश ने अपनी जादुई आवाज में गाया था और फिल्म तीसरी कसम से ही गीत था। वाकई में ही धन दौलत सब यहीं रह जाएगा और अंत में सभी को भगवान के पास जाना है। खैर, अब समय हो रहा है समाचारों का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय

0: साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में खतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश से की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। ये युद्ध के दौरान यूक्रेन के सबसे लंबी दूरी के हमलों में से एक है। रूस के अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said, India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar met with King Hamad bin Isa Al Khalifa in Bahrain and discussed ways to further strengthen bilateral partnership. Jayashankar arrived in Bahrain from Qatar on the second leg of his four-nation visit to the Gulf, which also includes Kuwait and Oman. The minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to the king and thanked him for ensuring the safety and well-being of the Indian diaspora in Bahrain. Mr. Jaishankar also interacted with the members of the Indian community in Bahrain. During the ongoing visit, Jaishankar has been meeting his counterparts and top leaders of the four Gulf countries to enhance bilateral relations and exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India's leather and footwear sector, which currently exports goods worth around $4.5 billion, has significant growth potential, with 38 developed countries opening their markets to Indian products through free trade agreements, FTAs. These countries include the United Kingdom, Oman, the UAE, and several others. Addressing the Council for Leathers Export National Export Excellence Awards 2024-25 in New Delhi yesterday, Mr. Goyal said that several countries, including Ecuador, are also keen to conclude free trade agreements with India, creating new opportunities for Indian exporters. The Ministry of Tribal Affairs will organize a two-day national workshop on strengthening tribal research institutes, TRIs, from today in Bhubaneswar, Odisha. Union Minister of Tribal Affairs, Shual Oram, will inaugurate the workshop. The workshop will bring together around 200 participants. On the occasion, the Ministry of Tribal Affairs and Sampurna Anand Sanskrit Vidyalaya Varanasi will sign a memorandum of understanding. Major highlight of the event will be the launch of Tribex, the first of its kind digital learning platform dedicated to tribal arts, culture, languages, traditional knowledge and skill development. In Andhra Pradesh, the fishermen rescued after a fishing boat capsized off the Vishakhapatnam coast has been brought ashore safely, while the search operation for the six missing fishermen has been intensified. According to an official release, the rescued fisherman Kari Chinna was airlifted by an Indian Navy helicopter to INS Dega and shifted to a hospital for treatment. He survived by swimming to the merchant vessel which rescued him. The search and rescue operation is continuing. Chief Minister N. Chandrababu Naidu has directed officials to intensify the search for the remaining six fishermen. In the FIFA World Cup, Spain defeated Portugal 1-0 in a closely fought round of 16 clash in Dallas, Texas, to book their place in the quarterfinals. Spain's Mikel Merino scored the decisive goal in the 90th minute plus stoppage time. In the other round of 16 fixture, co-hosts the United States will take on Belgium in Seattle this morning at 5:30 a.m. Indian time. In boxing, India continued its impressive campaign at the U23 Asian Championships in Jakarta yesterday. And that is the end of this news bulletin.

FM गोल्ड पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों, और अब कार्यक्रम होगा भोर सुहानी। भोर सुहानी कार्यक्रम में गीतों के साथ मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी दोस्त वंदना चुग। नमस्कार।

लता मंगेशकर की आवाज में ये भक्ति रचना आपने सुनी सांझ और सवेरा फिल्म से, शैलेंद्र के बोलते और शंकर जय किशन का संगीत। दोस्तों, अकेले में इंसान अपनी बात को केवल उसे ही सुना सकता है ना जिसे वो सच्चा प्यार करता है और उसे मालूम है कि उसके भावों को कोई समझ नहीं सकता केवल उसके अलावा।

काबुली वाला फिल्म से गीत आपने सुना, हेमंत कुमार का गाया हुआ, गुलजार के बोल थे और सलील चौधरी का संगीत। दोस्तों बहुत सी बातें हमारे उपनिषदों में कही गई हैं, फिर भी हम ना जाने क्यों इधर उधर उलझते रहते हैं,